अशांत मूर्ख अंत घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हृदय कमाए संत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिराए संत मलेच मल पाप खाए अशांत निंदक करे पा नानक नीच कहे मिटा मारे न जावा एक जो तुम पावे सही सही कर।

अंतर करती जग मरना सब तेरे बिन गुरी स्वस्थ आसानी ब्रह्मा सत सुहा

कृता निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैवम गुरु प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी, माया जिन उपाई, कर कर देखा कीता अपना, ज्यो तिस दी वड्याई, जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना जाई, सो पात साहो साहा पत साहेब, नानक रहन रजाई। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोए, के वड वड्डा डीठा होए, कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए।

कहाउ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिले नाही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलियै दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचै नाए रहाओ, साचे नाम की तिल वड्याई। आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे। वड्डा ना होवै घाट ना जाए, ना ओह मरै ना होवै सोग। देंदा रहै ना चूकै भोग, गुण एहो होर नाहीं कोए। ना को हुआ ना को होए,

समात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा, बिनौ करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर सरणाई, कर दया नाम परदास। मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परदास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास। रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृपतासा है, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रास, नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वै उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर मैं जंत उपाए। ताका रिजक आगै कर तरया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरया। रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पाओ करया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पछ बचरे शरया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मैं सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरया। जन नानक बल बल साध बल जाइए, तेरा अंत न पारा वरिया। राग आशा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावह संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी। से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करै हर पूजा जी, तप तापै जपै बेअंता। तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत सासत जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता।
तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर न कोई, तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी, तू निह चल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हों पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करै तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल, जिसनु तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्ह किया, पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूड़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हौ जति सती नहीं पढ़या, मूरख मुगधा जन्म पाया, प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरा कित ना काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधन जानिया हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखौ शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दै करिया, सब बैरन को आज संगरिया, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा, तुमह शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझु कर हौ रक्षा, राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा,
जवन काल जोगी सिव कियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सैव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बाध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभव। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपने बुध है जेती, बरनत भिन भिन तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पूज खान बहुर राज दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दोष्ट दुख तहवाय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरे।

आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दोता गावो हरि केरा मन जिने वसाया। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सुवारणा, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किशो है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दिया ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वासो कीते काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कहे नानक तय सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुने सच्चे बाणी, संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जानी।

जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित राख उर धारो। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा।

पौड़ी तिथै तू समरथ जिथै कोय नाहे उथै तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे पौ जल बिखम असगाह गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाए। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे बिरथा कोई न जाए जे आवै तुद आहे। सलोक महला पंजवा अंतर

गुर नाउ। सतगुर से तीरतया दरगह पाइय ठाउ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वाथ दे। जग मह उत्तम काडियह विरले के महला पंजवां,

तुम ते हो यीशु आज्ञा, तुमरी गत मित तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास राम दसी हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याए, जिस दिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै करनो नित्या बेताए। सब थाई होए सहज दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी। सब थाई होए सहज दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दार का ध्यान करके बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहबजादिया चाली मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्हों नाम जपया, वंड के छकिया देग चलाई देग वाही देग के अंडठ किया, तिना प्यारिया सत्यारिया की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलो जी। जिन्हां सिंघा सिंघणिया ने धर्म है सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपड़िया लुहाइया, चरखड़िया ते चढ़े आरिया ना चराए गुरुद्वारा की सेवा लिये कुरबानियां कीतिया धर्म निहारिया, सिखी के साथ स्वसन सिंह निभाई तिना की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी साहब बोलो जी। पंजा तत्तां सरबत गुरुद्वारिया का ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका। सर्व सुख हुए जह जह खालसा जी, साहिब तहत हर शरिया इत देख थे फतेह बिरद की पैज। पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी की बोलबाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विशा दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची, मत पत कारा का आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख। अपने पंथ के सदा सहाय दतार जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारा गुरुधामा जिन्हों तो पंथ नु विछोड़िया गया, खुले दर्शन निदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नु बख्शो। हेन माणियों के माण, नितान्यों के तान, न्योटियां दी ओर सच्चे पिता वै गुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ, दोए कर जोड़ करूं अरदास। तुद भावे ता आणे रास महाराज जी आप जी दे चरणां अरदास बेनती महाराज जी आप जी की महान महान बख्शिश होई। अमृत वेले तो लैके हुण तक आप जी ने संगतां नूं खुले दर्शन दीदारे बख्श के निहाल कीता है। ऐस वेले संध्या वक्त दे दीवान सजाए गए महाराज जीओ, सजे हुए दीवाना विच सौदा रह साहब जी दे जाप हुए ने। कृपा करनी महाराज जी बाणी दे जाप करदिआं आप जी की सेवा संभाल करदिआं होइयां बेअंत बेअंत फुल्लां बख्श देणियां जी। अगे वास्ते समत बख्शिश करनी शुद्ध गुरबाणी गायन करन दा बल उदम बख्शिश करना जी, बाणी दा भाव आईया संगतां दे हिरदे उत्ते वसाउणा, आईया संगतां दी हाजरी दर ते प्रवान करनी, सभनां दीआं तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां, सभनां नूं दरों करों नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करना, चढ़दी कला बख्शिश करनी, कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां दा नाश करना जी, सुखां दा प्रकाश करना, देशा विदेशा विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी। बेअंत संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रहियां हन, जाप सरवण करदे आप जी दा धन्नवाद करदे आ। बेअंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर दे सेवादारा सिंघां वास्ते ऑनलाइन भेटा कीती महाराज जी, सारी संगत दी हाई दर प्रवान करनी, सभना की माया सफली करनी, किरत कमाइया में बरकत पाया, श्रद्धा भावनावान संपूर्ण करनिया, चढ़ती कला बख्शिश करनी महाराज जी आप जी के दर घर के सेव सरदार तेजबीर सिंह जी, बीबी बामन जोत कौर जी महाराज जी, न्यू बेबी दे महाराज जी जन्म से पहला आप जी के चरणा विच बच्चे दे नाम की याचना करते हैं, कृपा करनी महाराज जी न्यू बेबी नू महाराज जी सोहने नाम की बख्शिश करके निहाल करना, बेबी के सिर से मेहर प्रात रखना, देर उगता तंदुरुस्तियां लंबिया मुरा बख्शिश करनिया, अंग संगों के सहायता करनी, परिवार को खुशियां
ਅਤੇ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਛਕੇ ਆਪਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਨਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾਮ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਲਗੀ ਸੋਹੈ।

0: सदा ही महाराज का शुक्र करिए, सदा मन लगे जाना लगे कोशिश करिए, उदा नाम साड़ी रसना थे वसदा रहे, उदे नाम विच ही सारियां बरकतां ने, उदे नाम विच ही सारे सुख ने, उदे नाम नाल ही खादा पीता पहने प्रवान हो जाता है, उदे नाम नाल ही घर विच सुख शांति बन जाती है, उदे नाम लिया महाराज कहते ने जीवन यात्रा ही सफली हो जाती है। इहां खाट चलो वरदा आगे बसन सुहेला। सच्चे पातशाह जी ने कैसी खेड रचाई है, कुदरत दिया कैसिया खेडा ने, कहते ने बस ट्रांसफर करी जाना है, उस रूह नू चक के उस बॉडी शरीर बदली जाता है। कहते ने जिन्होंने नाम जपया मनुखी देही विच बैठ के, फिर उन्होंने अगला समा भी अगला शरीर भी अगली जगह भी सतगुरां दे चरणा वाली मिलती है। कोशिश करिए, एक एक स्वास बड़ा कीमती है, भांडे विच्चों इस मिट्टी दे भांडे विच्चों एक एक स्वास इंज कह लो लीक हो रहा है, कटदा जा रहा है। इन्हां नू करमा वालियां रूहां संभाल लैंदियां हन। इस ग्रह में कोई जागत रहे साबत वस्त ओह अपनी लहे, सच्चे पातशाह तेरे नाम नाल सुखमई नाल समा बीत जाए, ये भी तुहाडी नजर मेहरामत दी निशानी है। जिहड़ी जिसकी जिंदगी सहज चल रही है, तुरिया ही जा रहा है, अज दा जमाना ऐसा है पानी दे वांगू वहिंदा ही जा रहा है, कहिंदे ये भी नजर है भई सही सलामत तू वह रहा है तुरी जा रहा है। सो जिंदगी चलती का नाम जिवें गाड़ी कहने आ ना आपां, चलती रहे पर नाल नाल परमात्मा दी याद बनी रहे, मन दा चैन सुकून घर विच सुख लो लंगर तपदे रहन, आया जीरा जी जाए जीवन सुखमई बीत जाए। भुल चुक दी खिमा आओ ज्ञानी लखविंदर सिंह जी बड़े गुरु दे साजे हुए निवाजे हुए सन्मान सत्कार्यो गुरमुख प्यारे हन, वो बड़े सुचजे ढंग नाल साडियां झोलियां महाराज दे गुरमत विचारां नाल भरदे ने, हुण वी भरनगे। उहनां नूं जी आयां नूं फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।

बाद विस्माद राग रागुण गुण गावे सुन समाद अगाद साद संगत सपरंपर अब गत अलख अपेर।

भांत अनेक विचार विचारा और जहान निदान कछ नहि ऐ सुबहान तू ही सिरदारा। हर की वडियाई हो आख ना सका, हो मूर्ख

नानक पवित्र सदा विगास सोने दुख पाप का नाश वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु की साजी नवाजी साध संगत वड्या भागा वाले होए जे सतगुरु साहिब जी की पावन पवित्र चरण सरण विच हाजरियां भर के सतगुरु साहिब जी के इस इलाही दरबार के विच सतगुरु साहिब जी करीमो करीम रहीमो रहीम फहीमो फहीम दानस पजीर मकीनो मकान जमीनो जमा पीरान पीर तश्तगीर जाहर पीर चरत गुर बाबा अलाही जोत निरंकार स्वरूप सिख धर्म दे बानी आदि गुरु धन धन साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज साहब जी वालों उस अकाल पुरख का बख्शिया होया इलाही शाहकार जप जी साहब जी की इलाही बाणी की आप तुष बुद्धि का विचार कर रहे। कल सुने की पहली पौड़ी की विचार की थी और गुरमत सिद्धांत भाई गुरदास जी के मुताबिक सी। सज्जन ने बड़ा प्रेम नाल बात च पुछया सी कि तुसी ये क्या भी वह सिद्ध सिद्ध नहीं सी ना रखाया। नहीं मैं नहीं किया, भाई गुरदास जी ने किया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब ने किया। और सच्चाई यह है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब ने उन्हां जतियां नूं जिहड़े छे जती ने जती नहीं मन्निया। और सच्चाई यह है कि भाई गुरदास जी ने उन्हां छे जतियां नूं जती नहीं मन्या। और सच्चाई यह है कि भाई गुरदास जी ने अहल्या नूं सती नहीं मन्या, भी सती अखवाया सती है नहीं सी। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब ने अहल्या नूं सती नहीं मन्या। अफसोस इस गल का है कि असी ना तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब की बाणी पढ़ते हैं ना असी भाई गुरदास जी की बाणी पढ़ते हैं। मेरे अर्गे गल करता वो सुन लें नहीं, मेरे अर्गे किड्डा भी गल्लां करना वो नहीं सुननी चाहिए। चाहिदा है कि आप थोड़ी थोड़ी एक दो अंग गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब की बाणी रोज पढ़ो, भाई गुरदास जी की भाई नंद लाल जी की बाणी पढ़ो। जो अपना फलसफा वो है जिहड़ा गुरु नानक साहब ने दिता है और उहदी बाबत गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब ने कहा जब लग रहे खालसा न्यारा तब लग भेज दूं मैं सारा, जब जे गए विपरन की रीत तो मैं ना करूं इनकी प्रतीत। साडा सिद्धांत जिहड़ा है ना वह न्यारा है। जे असी ये आखिए कि ये नाम सुन दे नाल असी वह सिद्ध वर्गे हो जावांगे फिर साडा परमेश्वर नाल मिलाप नहीं, फिर साडे ते वह वाहिगुरु की कृपा नहीं हो, क्योंकि किसी ने दुनिया के ऋषि मुनि अवतार आया उन्हें अपने किसी भी सेवक नूं अपने अर्गा नहीं जे बनाया। श्री रामचंद्र जी के बहुत नेड़े दे मित्र ने हनुमान जी, वह हनुमान ही रहा, उन्हें श्री रामचंद्र होने का मान प्राप्त नहीं जी होया। अर्जन कृष्ण जी का सब तो नेड़े का मित्र है और उन्होंने भूआ का पुत्र है, लेकिन अर्जन नूं कृष्ण जी होने का मान प्राप्त नहीं होया। हजरत मुहम्मद साहब के चार खलीफे ने, ग्यारह खलीफे एक ने चार यार ने, किसी नूं हजरत मुहम्मद साहब होने का मान प्राप्त नहीं होया। यह दुनिया से पहली बारी होया जिदन गुरु नानक साहब महाराज साहब ने बाबा लहणा जी नूं अपने वर्गा कर लिया।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਤਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਰਸਤੇ ਇਸ ਤੇ, ਦਰ ਇਸ ਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸ ਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੇ ਆਮ ਕੋਈ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ।

मेरे एक मित्र ने मुसलमान कनेडा च मेरी मित्रता हुई सी, लाहौर रेंदे आ, बड़े सियाने ने डॉक्टर ने, उन्होंने किताबा यूनिवर्सिटी लगिया हुई, मेरी उन्होंने नाल विचार गोष्ठी हुई। उन्होंने दसिया, मैं पूछा उन्होंने, कहते साडे इस साइंटिस्ट का मतलब यह आ कि असी खुदा दे मंगते हैं, खुदा कोलों मंगते हैं। और उन्होंने एक ताना भी दिता, नहीं तुहाडी सिखां गुणी कि मड़िया ते कबरां ते जाके अही ते कहिंदे उन्हां पीरां नूं मणदे नहीं ते तुहाडे सिख ही उन्हां पीरां ते जांदे आ। मैं उह सिख नहीं होणगे, कहिं तुहाडे की है, अही तुहाडा फलसफा बहुत चंगा है पर सत जाणियो साही तुहाडे तों, साडा फलसफा तुहाडे तों अगे आ। गुरु नानक साहिब बख्शिया कहिंदे की तुसीं ते खुदा ते मंगते जे ना, कहिंदे हां असी खुदा कोलों मंगते नहीं, सानू खुदा कोलों मंगण की लोड़ भी नहीं पैंदी, खुदा सानू अपने आप दिंदा है। साडे हाथ जोड़ने शुकराने की निशानी है। जिवें किसी के घरे बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे ने नहीं कहा मैनू कपड़े लिया के दिओ, मां प्यो ने आप लिया के दिती है। उस बच्चे ने नहीं कहा मैनू दुध पियाओ, उस बच्चे नूं पता ही नहीं बुखार होया मैनू मैनू दवाई दिओ, मां प्यो ने आप लिया के दिती है। उस बच्चे नूं पता ही नहीं हैगा मैं पढ़ने पैना है, मां प्यो नूं पता है इन्हूं पढ़ने पौना है। एक दुनियावी मां प्यो नूं यह पता है कि वह वाहेगुरु अकाल पुरख जो साडा मां प्यो है, जो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत, जो अंतर जामी पुरख बधाते साडे अंदर बैठा है, सानू उन्हूं कहन की लोड़ नहीं पैंदी। वह बिन बोलिया सब कुछ जानदा, वह सानू देंदा ही देता, हाथ जोड़ने शुकराना कर दे, तेरा शुक्र है कि दुनिया शुक्र कर दी, दुनिया दी दातां लैके तो साडे नाल कुछ भी बख्शे साडे घर, उन्हूं दात आख्या साडे सिखां ने, जदों अत दे तसीए चले ना उन्हें आख्या शुक्र है दातिया तू ए दात बख्शी है। और जो सच्चाई है कि जो भाई तारू सिंह की खोपरी ना लेंदी, भाई तारू सिंह जानना किने सी, जे भाई मनी सिंह का बंद बंद कटिया जाना जानना किन्ने सीगा, एक उची औखी घाटी जिहड़ी है सतगुरु ने आप चढ़ाया। नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगीए सुख होवे, सिख जिन्हें सिखी धारण कर ली है। याद रखो कि गुरु घर च दो चीजा आईया ने, तुसी गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब इतिहास पढ़ोगे, जो धन गुरु कल की धर पातशाह माछीवाड़े तुरे आ, तुहानूं हजूर साहब तक जांदियां अनेक परिवार मिलणगे, जिहड़े परिवार सिखी शामिल नहीं हैगे उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब की सेवा की, सतगुरु साहब जी ने किसी नूं हुक्मनामा भी बख्शिया, लेकिन सिख नहीं सी सेवक सीगे। सेवक होना होर गल है, लेकिन गुरु नानक का सिख होना जिहड़ा होर गल है। सेवक दुध पुत मंग सकता है, सेवक धन दौलत मंग सकता है, सेवक दुनिया का राज मंग सकता है, पर सिख नहीं जे मंग सकता। सिख केवल शुक्रगुजार करता है कि सतगुरु तेरे दित्ते दा शुकराना है। हां सिख मंग सकता है, करता तू मेरा यजमान, एक दखना तै पे मंग दे अपना नाम। सिख तेरा दीदार मंग सकता है कि सतगुरु कृपा कर मैं तेरा दीदार मंगदा वा, सुख दुख दो हजार कपड़े पहरे जाए मनुख, सिखी यह सिखी सिद्धांत है। दुख की है सिखी दे विच, पाप की है, दुनिया पाप होर गल मनदी है। ब्राह्मण कैली घात कंज का अनचारी का तान, फिटक फिटका कोड़ बदिया सदा सदा अवमान, पाहे एते जाहे विसर नानका एक नाम। इथे ब्राह्मण का अर्थ जो ब्राह्मण जोड़न वाला हो, जेड़े ये अल्फाज ने सिद्ध ईसर वर्मा इंद, ये अल्फाज परमेश्वर वास्ते ने, पर गल वखरी है कि दुनिया के आए हुए ओ मनुख। सच्चाई है कि सतगुरु की बाणी यह कहती, जुगे जुगे के राजे की ये गावे कर अवतारी,

बोलो जी। अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास से हुई सहाय। हरजन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जय जय जिथे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है कर नौ निदावे ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वंड छकिया देग चलाई तेग बहाई देख के अंडित किया तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चिरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां सिखी केसा स्वासा संग निभाई धर्म नहीं हारिया तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चितावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रैत देग तेग पते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी साहेब खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसव दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी के बोल वाले। बोलना जी। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पतदा राखा आप अकाल पुरख वाहे गुरु हे अकाल पुरख सतगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीव श्री ननकाणा साहब होर गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दी सेवा संभाल खुले दर्शन दीदार प्यारे पंथ खालसा जी नूं बख्शिश करो निमाणिया दे माण निताणिया दे ताण न्यूटियां दी ओट गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। धन गुरु नानक साहब जी महाराज धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है सच्चे पातशाह जी। आप जी दे पाणी अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया महाराज जी अमृत वेले तो इस वेले तक खुले दर्शन दीदार देख के निहाल करे वो महाराज जी शामा दे दीवाना विच सोदर रहरास आरती शब्द कीर्तन गुरमत विचारा अते शब्द कीर्तन दियां हाजरियां भरिया गई हाँ महाराज आप जी की हजूरी विच विचरदे हाँ सेवा करदे हाँ बेअंत भुलां हो जांदियां ने बख्श लेना बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां महाराज जी संगतां आपो अपने घर बैठे गुरु घर तो लाइव कीर्तन सरवण करदे हाँ गुरु घर वास्ते बेअंत माया भेटा हाजिर कर रही हैं महाराज जी सब दियां हाजरियां प्रवान बेटी प्रीत दे जन्मदिन ते वाहिगुरु जी का शुकराना करदे हाँ बीबी जसविंदर कौर गुरु घर वास्ते बेअंत माया भेटा करते हैं महाराज जी प्रवान करना गुरु गरीब निवाज परिवार वालों झलमन सिंह की तंदुरुस्ती अरदास बेनती है परिवार की इच्छा है महाराज आप जी ने पूरिया करनी गुरु गरीब निवाज जी रहण आइए आप जी के भाणी अंदर सुखमय बतीत होवे महाराज जी दासरिया के परिवारों दासरिया सदा सुख खुशियां बरकत रहमत आने वाला समा खुशियां लेके आवे पंथ की एकता चढ़ती कला इस वेले पवित्र हुक्मनामा बख्शिश करो हुक्मनामे ते चलन की समर्था सुख होवे नाम चितावे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पई अकाल की तब चलायो पंथ गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी प्रगट गुरां की देह जो प्रभ को खोज शब्द में ले राज करेगा ख्वार होए सब मिलेंगे
खंडा जाके हाथ में कलगी।

जय कर कीर्त्या की है करते का होए विचारो तित कर गावो सोहेला सुर सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भव का सोहेला हो वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तसदाते कमण सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सृजन सिसड़ियां जो हो वै साहेब से मेल घर घरे हो पहुंचा सुधरे नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से दयावन लागा समहला पहला शिव कर शिव गुर शिव उपदेश गुरु गुर एक वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाव विश्विच सिया घणिया पहरा तीती वारी माहो होआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग बनासरी महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चबरो करे सगल बंदराए फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती अनाता सबदवा जंत फेरी रहाव सहस तव नैन नन नैन है तोहे काओ सहस मूर्त नना एक तोहे सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोहे सब मह जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत इस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आनंद न मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग कौ होए जाते तेरा नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिख मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ सागत हर रस साध न जानिया तिने अंतर हों मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चलह चुबै दुख पावै जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समान है दुख जन्म मरण पव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख बड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा है।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाए अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ नित आवै ताए सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाए सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। हे गरीब नवाज सच्चे पिता धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी ने कृपा कीती है दाता जी अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक आप जी ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके दर्शन दे दारे बख्शे ने सतगुरु आप जी का कोटि कोटान शुकराना धनवाद है जी। इस वेले दीवाना की समाप्ति हुई है आप जी दे सुख आसन की सेवा सोहला साहब जी दे पाठ कीते ने आप जी दे दरकर दे टहलियां पासों सेवावां निभाउंदियां होईयां भुल्लां बख्श देणियां जी। कृपा करो अपने सुख आसन स्थाना विखे चल के विराजमान होवो संगतां नूं खुशियां बख्शो रात सुख शांति नाल बतीत करनी जी अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दे दारे बख्शिश करने सही प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

शिवाय नमः अष्टपदी सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ कल कलेश तन माहे मिटावौ सिमरौ जास विसंबर एकै नाम जपत अगणत अनेकै वेद पुराण सिमरत सुधाख्यर कीने राम नाम एको आख्यर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एकै दर्श तुहारो नानक उन संग मुहे उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभ सिमरत कछु बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न सताकै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निधान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इसनानी प्रभ कै सिमरन दरगह मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सो फल फला से सिमरह जिन आप सिमराए नानक ताकै लागौ पाए प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किश सूझै प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूरन आशा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभ को सिमरै से धनवंते प्रभ को सिमरै से पतवंते प्रभ को सिमरै से जन प्रवान प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे प्रभ को सिमरै से सर्ब के राजे प्रभ को सिमरै से सुखवासी प्रभ को सिमरै सदा अबिनासी सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगर वाला प्रभ को सिमरै से परो पुकारी प्रभ को सिमरै तिन सद बलहारी प्रभ को सिमरै से मुख सुहावे प्रभ को सिमरै तिन सुख बिहावे प्रभ को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभ को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभ को सिमरै तिन आनंद कनेरे प्रभ को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अन दिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभ कै सिमरन कब हुना झूरे प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी प्रभ कै सिमरन सहज समानी प्रभ कै सिमरन निहचल आसन प्रभ कै सिमरन कमल विगासन प्रभ कै सिमरन अनहद झुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जिन कौ प्रभ माया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग बेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीचौ कुंट जाते हर सिमरन तारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिस आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलूक दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई जय महापयान दूत जम दलै तय केवल नाम संग तेरा चलै जह मुश्किल होवै अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी अनक पुनः चरण करत नहीं करै हर को नाम कोट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपहु मन मेरे नानक पावो सुख तनेरे सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंध ना परै हर का नाम जपत निसतरै अनक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत आघावै जिह मार्ग एह जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा ते आईय नानक गुरमुख परम गत पाईय
छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तय पार पराही, अनक बिघन जय आये सुंगार, हर का नाम तत्काल उधार, अनेक जोन जनमै मर जाम, नाम जपत पावै बिसराम, हौ मैला मल कबहु न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै, ऐसा नाम जपहु मन रंग, नानक पाइय साध कै संग, जेह मार्ग के गने जाहि न कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा, जेह पैंडै महा अंध गुबारा, हर का नाम संग ऊजियारा, जहा पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पछानू, जह महा भयान तपत बहु काम, तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम, जहा त्रिखा मन तुज आकरखै, तह नानक हर हर अमृत बरखै, भगत जना की बर्तन नाम, संत जना कै मन बिसराम, हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात, हर जन कै हरे नाम निधान, पार ब्रह्म जन की।

प्रगट नहीं छपाए। हर की भगत मुकत बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिदवसै, संत प्रताप दुरत सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तुल कश अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्ब टडोल। पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी। जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान। योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मधे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमय कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरुमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड प्रथमी फिरै, चिर जीवै महा उदास। तपी सरथी वै अगन माहे होमत प्राण। कनक आशव है गर भूम दान, नेवली कर्म करे बहु आसन। जैन मार्ग संयम अत साधन, निमुख निमुख कर शरीर कटावै। तौ पी होमै मैल न जावै, हर के नाम सम सरकश नाहे। नानक गुर मुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन स अर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहु न बिखिया टरै। जल धोवै बहु देह अनीत, सुध कहाँ होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहमूच। बहुत स्याण बजम का भव व्यापै, अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। छूट सुनाही ऊभ पयाल, मुहे व्यापै माया जाल। अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगै, साध जना की सेवा लागै। जे को आपु ना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय साध गावै। जे को आपु नी सो बालो रै, साध संग ए होमै शोरै। जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै। जिस जन को प्रभ दर्स प्यासा, नानक ताकै बाल बाल जासा। सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान। आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल कीरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जान साम दृष्टिता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन कौ धन तेरो नाओ, निथावे कौ नाओ तेरा खाओ। निमाने कौ प्रभ तेरो मान, सगल घटा कहो देव दान। करन करावन हार स्वामी, सगल घटा के अंतर जामी। अपने गत मित जानो आपे, आपन संग आप प्रभ राते। तुमरी उस्तत तुमते होए, नानक अवर न जान सकोए। सर्ब धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया। सगल उद्दम मैं उद्दम भला, हर का नाम जप हो जी सदा। सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी। सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जिहे घट वसै हर नाम। सलोक निर्गुण यार यान्या, सो प्रभ सदा संभाल। जिन किया ते सचीत राखो, नानक निभि नाल अष्टपदी। रमैया के गुण चेत पराने, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अग्न में जिने उबारिया। बार व्यवस्था तुझै प्यार दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद भया ऊपर साख सैन, मुख्य प्याओ बैठ कौ दैन। एहो निर्गुण गुण कशु न बूझै, बख्श लिहो तौ नानक सीजै। जिह प्रसाद धर ऊपर सुख बसै, सोत भरात मीत बनता संग हसै। जिह प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला। जिह प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना, तिसै त्याग अवर संग रचना।

प्रभु की दृष्ट महासुख होए हरस पावे बिरला कोए जिंचा ख्यासे जन त्रिपताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजय चाओ साध के संग परे सनान सब त्याग अंतर पर घासन दिन निवलाग बड़ पागी जप्या प्रभु सोए नानक नाम ते सुख होए सेवकी मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक किन्नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख प्रम गया इच्छ पुन्नी शरदा सब पूरी रव रहया सत्संग हजूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भगति नाम समाये।

बिरला लाख सोख बिसरे बिकते काडे जन्म जन्म का टूटा गाडे गुरपुरे तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अवरह नाम जपावहो भगत पाए तरिये संसार बिन भगती तन होसी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख

नानक तुम्हरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए मखर के गुण गाय अनक राज भोग बडे अनक राज भोग बडे आई हर के नाम की कथा मन पाई भौ भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो करनी सो बातन वंत।

विरोध किस संग कमात, जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हरक सो कहो किसे व्यापत, जब अपने आप आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम, आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार, न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुकत कहो किसको गणी, जब एक हरगम पार, तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब शिव सकत कहो हो कित ठाए, जब आपे आप अपनी ज्योत तरह, तब कवन डर कवन कत डरे, आपन चलते आप करने हार, नानक ठाकुर अगम पार, अपना शिशु के अपने आसन, तय जन्म मरण कौ का विनाशन, जब पूरन करता प्रभ सोए, तब जमकी त्रास कहो हो किस होए, जब अवगत अगोचर प्रभे का, तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा।

वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं

0: चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता
1: चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने
0: चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती
1: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र पासे चतुर

0: रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कही पूपा
1: खंडज जे रस से तज कीनी उत्पुज खान बहर रच दीनी
0: कौन फूर राजा हवा बैठा कौन सिमट प्यो शंकर अकेठा
1: सगरी सृष्ट दिखाय चंपो आद जुगाद स्वरूप स्वयं पो
0: अब रचा मेरी तुम करो सिख वार असिख संगरो।

0: आवो संत प्यारो अकथ की करे कहानी,
1: करे कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईए।
0: तन मन तन सब सौंप गुरु को हुक्म मने पाईए,
1: हुक्म मन्यो गुरु के राग आवो सच्ची बाणी।
0: कह नानक सुनो संतो कथ्यो अकथ।

0: और नर मंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया
1: पाया अमृत गुर कृपा किन्नी सच्चा मन वसाया
0: जी जन सतुद उपाय एक वेख परसन आया
1: लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया
0: कह नानक जिसनु आप चुठा तिन अमृत गुरते पाया
1: भगता की चाल निराली चाला निराली भगता केरी विखम मार्ग चलना
0: लब लोभ अहंकार तत्रसना बहुत ना।

0: योग जगरना सो करया महला दूजा।
1: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं।

तुरे पलाने पौन वे घर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माणिया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन भाव दे हर बुझ नाही हारिया कर फरमाइश खाया वे कुमैलत मरण विसारिया जरे आई जोगन हारिया जरे आई।

खाए न खाई पाए पौड़ी, जिससे वह सुख पाई सो साहिब सदा संभाली है। जिती तप पाइए अपना सकाल गुरु क्यों काली है, मंदा मूला की चीज लम्मी नजर निहाली है। जो साहिब ना नहारिये ते वे पासा ढाली है, पिछला ही उपर काली है, पिछला ही उपर काली है।

गुरुग्रीव निवाच अंतर्जामी सतगुरु जी तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जागदी छोत हाजरा हज कल युग दी बोइत आप जी दर दे हाजरी कदे हम बेअंत गुरसिख माई भैरो आप जी दी बाणी दे सत्कार जो बेअंत माया बेटा कदे आप जी सारण सिखी दान प्रसादान जन्ना कमल प्यार बख्शन खजाने प्रपुर ने सो आहो गुरु प्यारे साध संग जी कीर्तन की इनिक सेवा प्रवानी हुई भुला चुका दी खिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम सरण करिए सिख पंथ के विद्वान सत्कार योग ज्ञानी लखविंदर सिंह जी दमदमदास साहब वाले उन्होंने पासो अज दे श्री मुखाक दे विचार गुरु इतिहासिक इतिहास सरण करिए दस वालों फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जत जंगम कापड़ाई तपी तपी सरमुन मह पिख्यो नट नाटिक निरताई चहु मह पिख्यो खट मह पिख्यो दस अस्ति सिमृताई सब मिल एको एक वखान है तो किस

ताओ कड़ी जे विसरे नर हर ताओ कड़ी है जे दूजा भाई क्या कड़ी है जा रहा सुनाए।

कहाउ बिन जिहवा कहा को बकता, बिन श्रवणा कहा को सुनता, बिन नेत्रा कहा को पिखै, नाम बिना

बिन बस पंच कहा मन चूरे, नाम बिना साध साध ही चूरे, बिन गुर दिखिया कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन भय

से जिस पापी कौ मिले न ढोई शरण आवै ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु त्याय रहाओ पाए।

खिन मह निमाने को दिनो मान, सब मह एक रहया भरपूरा। सो जापै जिस सतगुरु पू

जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान बड़ भागी पाए।

भगत की निंदा नरक पुंचावे, भगत की निंदा गर्भ मह गले, भगत की निंदा राज तिटले, निंदक की

सगल तिया वह प्रभ गुणता सा, जप जप आनंद कर है तेरे दासा, सिमर नानक साचे गुणता सा। पैरू महला पंजवां।

साध संगत पाइये वडभागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन मात पिता सुत बनता, बंधन कर्म धर्म हों करता। बंधन काटन हार मन वसै, तौ सुख पावै निज घर बसै। सब जाचक प्रभ देवन हारु, गुण निदान बेअंत अपारु। जिसनो कर्म करे प्रभ अपना, हर हर नाम तिने जन जपना।

बिसरी चिंतनाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, रहाओ रोग दो गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन भीतर सारे, गुर भेटत मन भया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत, जन्म मरण की मिटी जम त्रास, साध संगत ऊंद कमल विगास, गुण गावत निहचल विश्राम, पूर्ण होए सगले काम, दुलाभ देह आई परवान, सफल होई

अमोल फल अमोल परमान अमोल भक्ति अमोल निशान अमोल कर्म अमोल भगवान अमूलो अमूल आख्या मैं

सोहन पंच प्रवान सतरी कर्म सवैन कथ खाई उथ पाए नान गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का किते पौन पानी वह संतर किते क

निस्तार निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाए शांत पापी पाप अशांत मूर आ रहे शांत मलेर मल पाए अशांत निंदा।

अंतर गति जग मन लाओ सब गुण तेरे बनाई होए बिन गुण की तन होए स्वस्थ आस पानी ब्रह्मा सत सुहान ब्रह्म कवन सुनेला भगत कवन कवन सिद्ध कवन कवन सृष्टि मां कवन वेद न पाया पंडित दी।

कर्मी तो है विचार ना अब कितने सोहन मन प्रवान नदरी कर्म सोने कच्छ पाई उत्थे पाए नानक गया कर्मकांड का एक।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजुनी सैलम गुर प्रसाद। जब आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक होशी सत्य सोचे सोच न हो गई।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख गल व्या कमाए संख पापी पाप असंख नूर यार करे फिराए संख मलेच मल पाए असंख निंदक करे पाप नानक नीच कह क्या मारे न जावा जो तुम पावे सही परिकार सदा सलामत संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत रहे सिर्फ।

पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी सत्य।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवट हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूरे आर करे फिर अशांत मलेच मल पाप खाए अशांत निंदक करे पाप नानक नीच कहे क्या मारे न जाना एक जो तुम पावे सही परिकार सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम नाम संत दो असंत कहें सिर्फ

निस्तप निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख कल वाय संख पापी पाप असंख कूड़े आर करे सजाए संख मलेच मल पाए असंख निंदक करे पा नानक नीच कह मारे न जावा जो सुख पावे सही परिकार।

अब जाए ए साला नी खला है इतनी नदियां से बाहर पासों न जान समुद्र जाता गिरी कुल नामनी अंत न सुखी कहना अंत न करने देना अंत न देखना।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई।

असंत मूर्ख अंत भोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत गलवड हत्य कमाए संत पापी पाप असंत मूड़े आर कर संत मलेच मार पाए असंत।

सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सोवे ने कछ पाई उथे पाए नानक गया कर्म खंड का।

तत्पुर निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गलवड हृदय कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आए अशांत मलेच माल पाए अशांत निंदक करें पा नानक नीच कहें

बोल बिगाड़ न लिखे तेरे गवारा गवा ते सोदर तेरा सो करके ना जित बे सर।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैम गुर प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हृदय कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर यार करे फिराए अशांत मलेच माल पाक खाए अशांत निंदक चित करे पा नानक नीच कहे विचार मारे न जाना के जो तुझ पावे सही फलिका।

कृता निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सुचे सोच न हो गई

संस्कृतौ संस्कृत्य संस्कृतौ संस्कृतं वेत्वा संस्कृतो मनसं संस्कृत विज्ञान संस्कृति संस्कृत पूर्णो वक्ता।

कृता पुरुष निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवट हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर्यार करे अशांत मलेच माल पाए अशांत मलिंद

कृता पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाए शांत पापी पाप अशांत मूर यार करे रहे शांत मलेच माल पाए अशांत निंदक करे नानक नीच कहे मारे न जामा के जो सुख पावे सही करे।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय शांत पापी पाप अशांत मूर यार करे अशांत मलेश मार पाए अशांत

अंतर गलती जग मरना सब गुण तेरे मनाई बिन गुण की बस आस पानी ब्रह्मा सब सुहाग ब्रह्म कमल सुनेगा भगत कमल कमल सिर्फ कमल कमल सिर्फ की मां वेल न पाइया पंडित।

पे जाए ए साला जी खला है इतनी नदियां पे बाहर पासों में ना जान समुद्र साथ होता गिरी तुल नौनी अंत न सुनती कहना अंत न करने देना अंत न देखना सुन।